सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारिया चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदिया कहते मिठियां समझ के उन्होंने खाया, पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां की मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

0: है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो।
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हें इंद्रिया के रसां का गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया के रसां का ही गुलाम रह गया, वह शरीर के ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनू दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थ विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू घटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करी। कबीर साहब ने आख्या है सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जब तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

तो साड़ी विचार ये चल रही थी कि असि महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है, इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी एक बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वो गुजारी जाने। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असां तन दे संबंध दे विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दां दे राही मिलते हैं वो असी समझना है। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए सी। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तो वध के कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब का मंदिर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी के सामने रखिए। गुरु साहब आखते हैं ये रब की कामणी है, ये जरा शरीर है ये रब की पत्नी है, रब की कामणी है, उसने आप इसनु अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन किया, आप उसनु उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनु सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत है। तो अगर साढ़े पास ये है तो एक रब दी अमानत है, ये रब दी कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

संत जनों किवें उसे वाहिगुरु नूं पाए ऐ सुहागणी मैनू भी दस मैं भी अपने पति नूं खुश रख सकां कोई ऐसा गुण दस ते मेरे हजूर पातशाह कहंदे ने आ मैं तैनू दसां सहज दा सिंगार कर सच्चा ते संतोख सच ते संतोख इन्हां दा सिंगार करके ते फिर बोल मिठा कदी कौड़ा ना बोल पति तेरे वस विच आवेगा। हजूर कहंदे ने

चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की अच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं

जब खुद कर करा करतार परजा धरत तब दे अपार जब आकर कथो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूढ़।

आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तुहित रीति तुमरा लखा न जाए पसारा कह बचा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राग कहीं पूपा अंड जे रज से जकीनी उत्पुष खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आज गात स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा।

त्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासे देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा आत्म

जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

नानक नाम नरिंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो।

तू सतगुरु चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद अनाद।

मनुख पाप करदा बड़ा अपने आप नूं लको के भई कोई वेख ना दवे। पर हजूर कहंदियां ने भावे तू कितना लुक लुक के पाप कर जो तेरे अंदर बैठे हन दो जने हिसाब लिखण वाले चित्र गुप्त उना तू किवें छुपा लेगा भाई तू। दे की वार अनक पर्दे में पर दारा संग फाके चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। वो तो भाई हर वेले तेरे नाल हन वो तो हर वेले तेरिया करतूत वेख रहे हन जो तू कर रहे हैं। तू किसे नाल नहीं धोखा कर रहा तू अपने आप नाल ठगी मार रहे। उच्चारण करो श्री जिवें एक मजिस्ट्रेट बड़ा रिश्वत खोर सी कारदिया नूं भी कदे नहीं बख्शिया कोई भी आ गया रिश्वत ले बिना काम नहीं करना। एक बार अपने कमरे विच आराम कुर्सी ते बैठा ते जां ऊंग लगी पिनक लगी तां की तकदा के आके कोई मेरे सामने खड़ो गया कौन है भाई तू। आ दरवाजे बंद हन लॉक लगे हन ते तू अंदर किवें आ गया मेरे बगैर पूछे। ता इस बंदे ने आख्या भई असी इस गल दे अधीन नहीं हां जदों मर्जी है जिथे मर्जी है असी चले जांदे हां सानू अकाल पुरख दा हुक्म है जिथे मर्जी है चले जाई जदों मर्जी है आ जाई। आख्या तुसी कौन हो आख्या मैं अकाल पुरख वाहिगुरु दा भेजिया होया दूत हां ते ए तेरे कोल दो कापियां हन एक लाल है एक सफेद है एक आदे वास्ते हन। आख्या ए लाल विच तां मैं लिखदा हां जोड़े तू पाप करदा है ते सफेद कापी विच मैं ओ लिखदा हां जो तू चंगे कर्म करदा है। आख्या चंगे कर्म मेरे कितने कु हन आखे तू सारे जीवन विच पांच चंगे कर्म कीते हन ते बाकी 1150 दे करीब तू पाप ही कीते हन ते पांच विचों कढ के बाकी जड़े तू पाप कीते हन ओ दरगाह विच तैनू लेखा देना पवेगा क्योंकि चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। जो रात दिन तेरे इत्थे बह के तेरे कीते हुए कर्म लिख रहे हन तेरिया कीतियां हुई करतूतां लिख रहे हन तू उना कोलों किवें छुपा सकेगा। ता इस मजिस्ट्रेट दे मन ते बड़ा असर पिया भई पाप इतने ही माड़े हन ता फिर मैं कोई चंगे कर्म करा। ए सोहना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है ते मैं क्यों ना चंगे कर्म करके अपना जीवन सफल करा। ता ए रू जो ए जो फरिश्ता आया सी ना इसने सफेद रजिस्टर कढ़िया ते कुछ लिखन लग पिया। ओ कहन लगा भई इस विच की लिख रहे है अखे मैं ए लिख रहा कि हुण पवित्र घड़ी विच तेरे मन विच कुछ अच्छे ख्याल उत्पन्न होए हन ते जदों अच्छे ख्याल उत्पन्न हो जान मन सिमरन विच चला जांदा है ते चंगे कर्म होंदे हन उस वेले पाप नहीं होंदे जदों अच्छे ख्यालात अच्छे ख्याल प्रगट होन। उच्चारण करो श्री अज सोझी पै गई के कीते हुए पापां दा हिसाब देना ही पवेगा। मन विच प्रायश्चित करन लगा क्योंकि साडी ऐसी अवस्था है हर मनुख दे सिर ते काल कूक रहा है
ਆ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਹ ਕੀ ਵਾਰ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰ ਦਾਰਾਂ ਸੋ ਫਾਕੈ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਡਾਕੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ

राग गौड़ी बैरागन विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इसकी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द का गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा करान जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे झूठे कौले माई दे पे जी, आज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मां जा। बाबा जी कौले मांजदे पे, कौला हाथ च, नाल नाल सिमरन नाल नाल कौला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कौला। इन्नी क लिव लग के कौला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे,

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहन वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहन वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग तन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जिहड़े आनंदपुर साहिब रहा करदे सन ओ कहंदा है

मैं आनंदपुर साहब रह के देखे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजियां महाराजियां मिलना बड़ा औखा है, जिन्हां राजियां महाराजियां दी एक झलक देखनी बड़ी औखी है, उन्हां राजियां महाराजियां नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने, ओ गुरु इतनी निम्रता, इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब, मेरे मित्र, तन रहने वास्ते घर, सब कुछ खालसे ने।

कला नाम करके खालसा नहीं, जिन्हें आत्म रस नु जान लिया ओहो ही खालसा है। सिर्फ नाम दे नाल खालसा नहीं, आप जिन मर्जी कह देने आओ खालसा जी, कई अपने नाम दे नाल भी खालसा लगा लें दे।

माधव जी। सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

संगत कैसी जानी है। केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम विखानी है। ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा, ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी। बिसर गई सब तात पराई, इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन,